रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज

जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्थिपुरंदकारी भानु शशि भूमिसुत बुधश्च